0: Rising LNG, diesel and furnace oil prices add to the woes. Per unit electricity prices have also shot up by 155% over the last 3 years. Power outages have cost Pakistan's economy more than $4 billion annually. Small and medium enterprises are particularly impacted due to their small profit margins.
1: इसके कमेंट्स वगैरह देखे ना
2: ठीक
1: ये भी रिसीव इसे कह लो गिनती करके
2: ठीक
1: है हैंगिंग लूप नहीं लगाया इसको ठीक
2: है लगवा दो
3: मेरा नाम सैयद शुएब अली जाफरी है और मेरा एक स्टिचिंग यूनिट है मैं लोकल क्रीम ब्लॉक मार्केट का और कुछ ब्रांड्स हैं उनका साथ काम करता हूं
1: यार जरा इसको सही तरह सेट कर लिए आप प्लीज
0: Power cuts have resulted in an average output loss of 25% across Pakistan, particularly affecting industries like textiles and machinery. This equates to roughly 2.5% of the country's GDP.
3: देखें बिजली तो हमें ना होने के बराबर चाहिए होती है लेकिन अगर बिजली आएगी नहीं तो तब भी हमारा काम बिल्कुल सफल होगा ना चलें ये काम आप लाइट पे डालते ही नहीं हैं हम पैटर्न बना लेते हैं अब जब उसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए हमें लाइट चाहिए कटिंग के लिए लाइट चाहिए उसके बाद जब वो कटिंग हो जाएगी फिर जितना भी काम है उसके बाद सारा लाइट का काम लोड शेडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो आप एक वीक दो वीक ऊपर चली जाती हैं जिसकी वजह से हमें 25% पेनल्टी पड़ती है 20% पेनल्टी पड़ती है और जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं उनका घर जो उनसे है वो उस हिसाब से नहीं चलता एक वर्कर है उसने यहाँ पर तीन मैक्सिमम 1,000 या 2,000 रुपये का काम करना ठीक है अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो 1,000 रुपये लेके जाएगा
1: देखिए हर चीज़ पैसे पे नहीं आप डिपेंड करते आप का इमेज का नुकसान हो पार्टीज आपको दोबारा काम नहीं देती देखिए पार्टीज को काम चाहिए पार्टी उसी को काम देगी जिसके पास ये सारी फैसिलिटेटेड चीज़ें होंगी ना
0: Country wide power shortfall has reached 4,500 megawatts, enough power to light up 4 million homes.
4: In the past 1 month, there have been about 2 weeks because of lack of LNG import and disruptions coming in from the Strait of Hormuz, and also lower hydel generation due to lesser requirement of the provinces to take water out of the dams. Because our hydel power, the first priority is irrigation. So however much irrigation water is required from these dams, that's how much hydel power is produced. So we had a situation in the last 2 weeks of April where hydel was low, there wasn't any LNG, and so there were disruptions. And this is going to also impact the cost of energy for this particular month and until the US-Iran war issue is resolved.
0: An unreliable power grid has forced a people-driven revolution. The Hall Road Market in Lahore is the commercial heart of Pakistan's solar boom. Since 2017, Pakistan has imported 58 gigawatts worth of solar panels, making Pakistan one of the world's biggest importers.
5: Government ki price itni zyada high hai ki har banda chahe wo uske paas ek plate ki paise ho na to wo ek plate hi buy karne aa jata hai lahore ke andar takriban 4 se 5 zone hai jahan solar bik raha hai jaise aap halol le le aap johor town le le aap dha chale jaye आप ठोकर वाली साइड पे चले जाएं, डिफरेंट जोन बन गए अब हर तरफ अब सोलर बिक रहा है हालांकि पाकिस्तान में चीज़ों के रेट बढ़े हैं महंगाई ज़्यादा हुई है, चीज़ों के रेट बढ़ने चाहिए थे, सोलर महंगा होना चाहिए था, लेकिन सोलर सस्ता हुआ है, वो इसलिए क्योंकि नई से नई चीज़ आ रही है।
6: 2-4 days
7: बाद तुम कहोगे यार घर का साडा बल्ब सड़ जाता, पहला नहीं सड़ता हूँ सड़न लग गया, क्यों? करंट साफ नहीं गा, एरा करंट होता है फिल्टर, फिल्टर करंट होता है, लोग क्यों लगवाते हैं ऐसी वजह तो लगवाते हैं कि लाइफ ज्यादा है।
5: जो सोलर है ना ये 100% इम्पोर्टेड आइटम है, प्लेट्स, इन्वर्टर, लिथियम बैटरी 100% चाइना के इम्पोर्ट की जाती है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनको एजुकेट किया जाए या थोड़ा सा उनकी तालीम या थोड़ा सा उनको समझाया जाए या अगर फ़ौरन आप ट्रेनिंग दें उन्हें तो वो अच्छा कर सकते हैं काम, उसके अंदर हाइब्रिड भी बना सकते हैं। एज अ बिजनेस मैन देखा जाए तो सोलर प्रॉफिटेबल चीज़ है, सोलर अगर प्रॉफिटेबल ना होता तो जगह जगह शॉप्स नहीं बनती, और सोलर की वजह से मेरे ख्याल से लोगों के पास काफी ज्यादा इनकम आई है और काफी फायदा हुआ है लोगों को।
0: As Pakistan's population grows, electricity demand has risen by 21% since 2024. That additional demand has been met entirely by solar power. Rising solar demand has also created new economic opportunities, with green jobs expected to continue growing through 2030.
8: Assalamu alaikum.
9: इस सोलर रश को लेके कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे सक्सेस इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनसे दूसरे ममालिक स्पेशली जो ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सीख सकते हैं। The solar panels did not just deliver cheap electricity to the country. They helped mobilize 17 to 18 billion US dollars of investments, and that too without any kind of, you know, support from the financial market. And at the same time, the solar sector helped create 500,000 jobs, and it was happening around the time when nothing else was really working in the country and then the economy was in a really bad shape. Solar now is the cheapest form of electricity, and people who cannot afford any other source can put up solar.
10: Pakistan is heavily reliant on fossil fuel imports, and those imports, most of them, they pass through the Strait of Hormuz. Because of the solar rush, the country has been able to basically avoid 12 billion US dollars of fossil fuel imports since 2017, and then it is well on its way to save another 6 billion dollars by the end of this year, which is quite remarkable. The country would be able to save anywhere between 100 to 125 billion US dollars over the lifetime of the solar panels that have already been imported to the country.
0: The country's solarization is now leaving a trail of prosperity in the rural parts of the country.
11: This week on Singapore Hour. Planning a trip to Singapore? Step into these heritage hotels for a stay like no other.
12: Like I stepped into 100 years ago.
13: Quite cool, huh?
11: And stop over at this Insta-worthy neighborhood where tradition thrives and subcultures find their stage.
14: Kampung Glam represents a very different side that you don't really get to experience in Singapore.
11: Your Insider's Guide on Singapore Hour, tonight on CNA.
15: Saturday on Japan Hour, getting to know beautiful Japan
13: takes you on a pilgrimage of horses, hopes and heritage. Meet the sacred horse of Ese Grand Shrine. Horses that carry wishes to the gods. And the hardy Kandachimi horses, where every hoof print tells a story. Japan Hour, Saturday on CNA.
15: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya, visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.
16: ตอนแรก มีคดีแค่ 1 2 3 มันกลายเป็น 8 เป็น 10 แต่ผมคิดว่า 30 กว่าคน
17: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
18: How could this woman be a killer?
16: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืน
18: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
16: คนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
13: Watch Death Loans, Thailand's Cyanide Murders, on demand at cna.asia.
19: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
20: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
19: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.

0: Pakistan's solar revolution is no longer confined to homes and villages. It is now transforming the country's industries. A 394-kilowatt solar system now powers the Khawaja Flour and General Mills factory in Hassan Abdal. In a country where high energy costs and frequent power cuts challenge businesses every day, this factory owner has become almost energy independent.
1: This solar system, main jo wire iske panel lage hue hai na, wo wahan se iski sari wires ja rahi hai. Is ye phir aage se jo hai na, ye system sara, ye inverter lage hue hai. Theek hai ji? ये इनमें सारी ये बिजली जो है इस इनमें जाती है फिर ये आगे इस वक्त मिल जो है ना वो चल रही है और सारी बिजली जो है तकरीबन इस वक्त 300 किलोवाट सोलर दे रहा है और बाकी जो है ना 100 किलोवाट जो हम वापस दे रहे हैं
0: The mill has significantly lower operational expenses than its competitors.
2: ये जब 2000 में मैंने मिल चलाई उस वक्त भी बिजली की लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम था और बिजली महंगी भी थी लेकिन बिल जो हमारा 20 25 30 लाख आता था वो कभी आधा हो गया कभी जीरो हो गया एक बचत इसमें काफी हुई है एक तो हमारा बिजली का बिल तकरीबन जीरो हो गया और जैसे कि आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी भी हो गई है तो इस सोलर की वजह से हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने में आसानी हो रही है क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंस है वो कम हो गया है सोलर ही है जो इस इंडस्ट्री को बचाएगा इंडस्ट्री के लिए ये एक हिसाब से ब्लड का जो है वो दर्जा रखता है कि जिस तरह जिसके लिए ब्लड हमारा ज़रूरी है या सांस लेना ज़रूरी है या सोलर भी इस वक्त जो है वो एक सांस लेने वाली बात है इससे इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी और लोग जो है इसमें और भी आ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है
0: Decade, Pakistan has built a solar industry that is expanding rapidly. Today, more than 200 solar panel, inverter and battery manufacturers from all over Pakistan have descended in Lahore to launch new products.
3: उसकी सर सीएनएफ कराची रेट दे रहा है $23,000 कंबाइन हमारा कंपैक्ट यूनिट है ऑल वन में ही है
4: लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा यार
0: The solar boom was fueled by an influx of low-cost solar panels from China. It's helped save billions in expensive fossil fuel imports.
4: In Pakistan, usually people go for cost, which should not be the case in solar panel, inverter or batteries, because these equipments give you energy backup for a longer period. Quality should be the first and foremost priority. For any customer who is going for solar solution. We have installed around 51 gigawatt in Pakistan and the potential is 2800 gigawatt. If we install 100 gigawatt, right, 10 to 12 billion dollar saving. We are wasting so much money in electricity bills, agriculture and industry. So just imagine how can we save so much from energy and we can balance our trade deficit. The more cost effective it is, the more competitive we are. The saving the individual do, it can be invested in kids' education, health and food. It will reduce carbon emission, bring Pakistan out of debt, and it will result in prosperous Pakistan.
0: Private rooftop solar production is now Pakistan's single largest source of electricity, accounting for more than 25% of total production in 2025, ahead of gas, coal, hydro, and nuclear.
4: It was a perfect storm. There were so many variables which actually lead to this revolution. Everybody was interested to import solar equipment. The prices were collapsed in China, so that actually gave an opportunity to the investors. So all the investors jumped in to gain that profit.
5: people have had the buying power. In last 5 to 8 years, we imported around $22 billion solar equipment. So that's not by government, that's by us people. It's a people-driven revolution. So all these things combinedly resulted this revolution.
0: The Pakistan government is now increasing quality controls by establishing the Pakistan Korea Testing Laboratory, the first state-of-the-art facility for testing imported solar panels in Pakistan.
6: On average, 17,000 megawatt jo hai, wo import ho rahe hain solar panels each year. So when there is such a bulk quantity in such a large quantity, if its quality is compromised, then the technology can defame ho sakti hai, aur uske consequences bahut zyada ho sakte hain. So we have to ensure its quality. Our plan is that we have to have it in the mandatory list of items which we have to quality control karni hai, our regulator. We have to include it in that. And then there is a scheme hai, Foreign Manufacturing Licensing Scheme. उसके अंदर ये होता है कि जो रेगुलेटर है उसका इंस्पेक्टर जाता है मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी को विजिट करता है वहां से रैंडम सैंपल पिक करता है उन रैंडम सैंपल्स को जो है वो हमारे पास वो लैब में भेजेगा हम उसके ऊपर कोई 3 मंथ्स लॉन्ग जो है वो रिग्रस टेस्टिंग करेंगे एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स
0: ऑपरेटिंग अंडर द पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी एवरी इंपोर्टेड कंसाइनमेंट ऑफ सोलर पैनल्स अंडरगोस रिग्रस टेस्टिंग Today, one panel is undergoing a wet test.
6: Standard हमें recommend करता है कि आप इस चीज को भी test करें और ensure करें कि जब बारिश हो रही है panel wet है तो under wet conditions ऐसा तो नहीं है कि जो internal इसका जो current है वो outer frame तक उसकी access हो short हो जाए और जो इसको user है कोई इसको हाथ लगाता है उसको electric shock लगने का अंदेशा तो नहीं है कि हम इसको पूरा डिप करके पानी के अंदर और फिर जो है वो इसको देखते हैं कि एक कनेक्शन हमने सर्किट से लिया हुआ है इसके इंटरनल सर्किट से उसको पे करंट अप्लाई किया हुआ है और दूसरा कनेक्शन हमने इसके आउटर फ्रेम से लिया है और पानी से लिया है तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो अंडर वेट कंडीशंस बाहर तो नहीं आ रही है
0: पाकिस्तान का एक्सट्रीम क्लाइमेट पुट सोलर टेक्नोलॉजी टू द टेस्ट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट To intense monsoons and windstorms, rigorous stress testing ensures solar panels can withstand these conditions and perform reliably.
6: ये हमारी जो मशीन है, इसके अंदर basically हम simulate करते हैं कि अगर panel हमारा जो है वो field के अंदर लगा हुआ है, mounted है, और जलाबारी है, hail storm है, तो ऊपर जो ice balls fall कर रहे हैं इसके ऊपर. उनको सस्टेन करने की कि ये ब्रेक ना हो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है तो हम उसको सिमुलेट करने के लिए हमने जो हमारी जो जो लिटरेचर बताता है कि अप टू 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ भी आइस बॉल जो है वो इसको हिट कर सकता है और ये मशीन जो है ये पूरे पैनल के ऊपर जो रिकमेंडेड एरियाज हैं हम प्रोग्राम बना देंगे और उन तमाम एरियाज के ऊपर जाके ये उस सेट वेलोसिटी के साथ हिट करेगा और हम देखेंगे कि इसने सस्टेन किया है कि नहीं किया और इसके बेसिकली प्री और आफ्टर के जो है वो टेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये टेस्ट इसने पास किया कि फेल किया
0: इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड वाइडर अडॉप्शन आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री
7: First thing in the morning as Asia wakes up to a new day. Get up to speed with major events shaping lives in the region and other parts of the world.
8: Putting things in perspective with eye-opening reports and expert analysis as a new era of global politics breeds power struggles and shifting alliances.
7: We get to the heart of the matter and take stock of the issues you're invested in with on-the-ground reports and wall-to-wall coverage. Viewing it all from a regional lens because we put Asia first.
9: AI changed what this Gen Z could earn. And now, he's the boss. He used leverage to try to reach financial freedom faster. Was the risk worth it? Plus, would you give up a graduate salary to run a food truck? On Money Mind, Wednesday on CNA.
10: It has been scorching in Hong Kong over the last few days.
11: This is one of the worst heat waves on record.
12: Temperatures on a tear. From Europe to Asia, 2026 made its mark, burned into our memory.
13: This year is predicted by the scientists to be the hottest of all.
12: CNA correspondent looks at heat and how we can better live with it, with scientists saying hot days are here to stay. Wednesday on CNA.
14: CNA 938, news you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust.
15: India's overseas talent is coming home.
16: I wanted to see how I can build in India, so I decided to move back in 2024.
15: Some are driven by new opportunities.
17: Today, India is the fastest growing economy.
15: Others by a lack of welcome abroad.
18: There was also anti-immigrant rhetoric.
15: How will India accommodate the returnees?
19: We have to remember that not everyone's going to get a job.
15: India's reverse brain drain. Insight, Thursday on CNA.

0: Projectors, like this is one projector, it's Nebula capsule, we use this.
1: तो बच्चों अब लाइट आ गई है, अब बस हम क्लास शुरू करने लगे हैं।
2: Solar power is creating a second chance at education after dark.
1: इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये एलिफेंट। कौन? ये एलिफेंट सबसे बड़ा है। मदद करने को? यंग मतलब जवान। मैं मदद कर रहा हूँ, यानी आई एम हेल्पिंग। हग, जैसे ईद पे है, हम ईद पे एक दूसरे को क्या करते हैं? हग, गले लगना। हग, गले लगने को कहते हैं हगिंग। ठीक है, सोचने को क्या कहते हैं? थिंकिंग।
0: It was not a project. It was a revolution for me, an initiative which can educate Pakistanis, not the single Pakistanis, but 26 million out-of-school children, millions of illiterate people, the adults, the youth. The reason I created this was just because, like, I couldn't look up to these children, their dreams dying, like the children who should have, like, pencils, toys in their hands, but they were having like bricks, the brooms. I wanted to replace those brooms, those bricks with IT, technology, books, pencils. Education is a long-term process. The results takes like several years, even sometimes decades. But several of our students are going great, like they are performing exceptionally well, way beyond our expectations.
1: हमारा प्रोविंस है पंजाब।
0: आई कंसिडर दीज चिल्ड्रेन एज एन एसेट फॉर पाकिस्तान। दे कैन बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर आर इकोनॉमी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। वी शुड नॉट कंसिडर देम एज एन लाइबिलिटी। सो माई होप्स आर रियली हाई फॉर दीज चिल्ड्रेन, लाइक दे रियली लव लर्निंग, दे रियली इंजॉय राइटिंग, रीडिंग। लाइक आई एम रियली होपफुल फ्रॉम देम, लाइक दे कैन बी अ स्ट्रॉन्ग एसेट। They can be a future doctors, they can be future engineers, they can be future pilots, like they can be a main force behind the betterment, the growth of our nation.
2: By 2050, solar is expected to dominate Pakistan's power supply, dramatically reducing its reliance on imported fossil fuels. But the transformation is already underway. Across homes, farms, businesses, and communities, Pakistanis are harnessing the sun to build a more affordable and resilient energy future.